नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

परश्वत तपोधन रामचन्द्र शेषांश रामय दुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास वाली परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी।

आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, अरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलयाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वत देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदा राज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या करेगी? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौला वाला।
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: हला मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ू छोटे सरकार। ये मैं मर गई। अल्लाह।

0: क्यों?
1: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?
1: जल्दी आ जाऊंगी।
0: कितनी जल्दी?
1: थोड़े दिनों बाद।
0: कितने होते हैं थोड़े दिन?
1: यही कुछ 6-7 महीने।
0: 6-7 महीने?
1: आहिस्ता बोलो।
0: हम मर जाएंगे।
1: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर में रनौशा। बुरी फाल मुझसे ने निकाली, अल्लाह अपने रहम करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
0: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
1: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती। सनोबर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
0: बच्चा?
1: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
0: मेरे सर की कसम खा।
1: नहीं अल्लाह नहीं।
0: हलीमा तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
1: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
0: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा। बच्चा कब तक होगा?
1: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
1: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
1: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
0: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
1: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
0: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
1: सरकार।
0: शट अप।
2: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
3: ये लीजिए।
2: ये शह वो मारा।
0: भाईजान मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
3: अम्मा इस वक्त बड़े जोर की बाजी जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
0: भाई जान
3: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
2: शेह हजमत नवाब शेह।
0: उफ प्लीज भाई जान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
3: उफ वो कहो क्या कहना चाहते हो।
0: जरा मैं
3: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
0: भाईजान
3: अम्मा कह भी चुको,
0: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
2: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
0: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
2: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है अम्मा, उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
0: अफजल भाई
3: अच्छा जाने दो, आगे चलो।
0: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा
3: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
0: वो गाय भैंस नहीं, वो
2: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
3: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
2: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
2: और फिर सितंबर के महीने में हुर्मा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुर्मा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
3: बहुत खूब, वो कब?
0: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
3: और निकाह? काजी कौन था?
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
2: वल्लाह तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
3: जाओ मियां क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाएं। ला हौले वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
2: जमन मियां तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
3: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
0: भाई जान मैं
3: बदतमीज।
2: अरे अरे अरे ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या
3: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई?
2: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
4: बेगम साहिबा एक बात तो हूं। कह भी चुको क्या कह रही हो। नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है, उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी। अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है।
5: हाँ हाँ खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
4: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संग तो न ले जाएंगी?
5: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा।
4: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
5: है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारों पीटी मेम की मैयत को पीटने बैठ गई।
4: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं। मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं?
5: ए बुआ तो कुछ मुंह से

0: उठो तो
1: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
0: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफन करो।
1: जो हुक्म सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
0: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी।
1: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नाम उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
0: कभी सोचती हूँ नायाब, तुम न होती तो।
1: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
0: जरी खासदान आगे बढ़ा।
1: लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती हैं।
0: अच्छा दिखा लाओ।
1: ऐबी मतन, तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
2: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
1: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
2: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
1: लौटी तो आपके पास हाजिर हुई थी।
2: क्या है?
1: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
2: क्यों?
1: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
2: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
1: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
2: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
1: जी जी हाँ।
2: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
1: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक, ये देखिए ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा ये, हाँ लाकेट।
2: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
1: है? है। रानी बिटिया क्या फरमा रही हैं आप?
2: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
1: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
2: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना।
1: बच्चा? कैसा बच्चा?
2: फरखुंदा खाली कह रही थी कि
1: बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांधिया इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती है।
2: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
1: ए बिटिया, आप भी गजब करती है, आखिर नवाब जाते हैं मगर वो लौंडी बांधी तो जी का बेलावा होती है, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
2: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
1: और क्या बिटिया रानी,
2: हशमत भाई की भी तो एक बांधी थी, क्या नाम था?
1: ये वो रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
2: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू?
1: शौक से पूछिए, मगर वो
2: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
1: हाय हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रही हैं?
2: क्यों, अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
1: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रही हैं, वो होती तो मजा न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतिया मारती। बेटी जान, ये गज भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
2: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
1: बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
2: आय हाय बुबू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
1: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
3: ओहो नायाब आई है, चली कहाँ, क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
1: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं, खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बम्बई से बनकर आएंगे।
3: नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है, समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
1: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
3: है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
1: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा, बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
3: खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
1: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती है, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती है बेगम, नौच यूं कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या करूं बेगम से जाके?
3: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
4: अम्मा, हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक मोरी में मुंह देते हैं और।
5: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
4: मियां तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
5: कुद्दूस भाई, आप नहीं समझते।
4: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे?
5: हलीमा मर जाए।
4: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्ला क्या पटाखा है।
5: कमीने पाजी।
4: छमन, होश में आओ, क्या पागल हो गया?
5: हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा।
6: जी सरकार।
5: कौन सर भाई?
6: जी।
5: तुम यहाँ क्या कर रही है?
6: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है, कुर्ते में लगा दो।
5: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
6: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हमाम में पानी तैयार है।
5: हलीमा कहाँ है?
6: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।
5: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
6: अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
5: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी। चल भाग।
6: हम नहीं जाते।
5: कहाँ है हलीमा बता।
6: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
5: बता, नहीं बताएगी?
6: बताती हूँ।
5: बोल।
6: वो उधर शागिर्द पेशे में।
5: क्यों?
6: वो उसका जी अच्छा नहीं है। ये मियाँ खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
5: फरखुंदा बाजी।
6: अरे छमन मियाँ, क्या पैदल भागे चले आ रहे?
5: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी, वो मर रही है।
6: अहे कौन?
5: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
6: ठहरो,
5: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
6: नहीं मियाँ, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं। बुबू, नया बुबू, अस्पताल की लारी आई है।
1: अस्पताल की लारी? दीवानी हुई है ना मुराद?
6: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
1: ये क्या किस्सा है नायाब?
6: लारी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
1: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
7: लीजिए, वो आ गई।
6: तस्लीम मानी जान।
1: जियो, ये मुझे अस्पताल की लारी क्यों आई है?
6: हलीमा को लेने।
1: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
6: इस वक्त बहस ना कीजिए, पहलोठी का बच्चा है, अगर
1: तुम्हारी बला से। तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
6: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
1: हद से ना बढ़ो फरखुंदा।
6: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
1: क्या मतलब?
6: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
1: पुलिस?
7: या अल्लाह,
1: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
6: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
5: नहीं, मैं उठा लूंगा।
6: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
8: आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
5: चुप रहो बेवकूफ।
6: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो,
5: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
9: ये क्या हो रहा है?
6: आदाब मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
9: हमसे पूछे बगैर?
5: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
9: मर जाने दो।
5: अब्बा हुजूर,
9: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
5: नहीं,
9: तुम्हारी ये हिम्मत, एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो, बेशर्म।
5: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
9: क्या बकते हो मर्दूद, हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
5: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
9: तुम्हारे इतने दिमाग।
7: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
5: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
7: अरे कहाँ जा रहा है छमन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
5: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
7: ना जाओ मेरे लाल।
5: खुदा।
7: ना जाओ मेरे लाल। छमन।

0: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे।
1: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ, ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
2: नहीं बुबू, कैसे हैं चमन मियाँ के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
3: अरे मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
4: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है।
3: अरे बेगम, बस जांघ का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत है।
4: घर बार कैसा है।
3: अरे बेगम, कुर्बान जाऊं ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है, बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी के उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छमन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
4: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
5: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हेमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
6: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
7: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
6: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
8: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
6: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
9: तुम्हारी याद सताते हैं।
6: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Science, light, sound, camera, action.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब।
2: हाँ हाँ।
1: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
2: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
1: जी,
2: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था
1: जी, बिल्कुल।
2: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब। तो ये है, वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
1: अच्छा।
2: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
1: जी
2: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
1: अच्छा।
2: मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहाँ। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा, देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
1: जी,
2: था
1: जी।
2: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल।
2: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था।
1: हाँ।
2: उनके लिए इतना कहना ही काफी,
1: बहुत बड़ी बात।
2: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है,
1: कम है जी,
2: है ना। उनके साथ तो ये था, मेरा नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी
1: जी,
2: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है
1: जी।
2: तो हम गए और वो भी टेनिस खेलने गए थे।
1: अच्छा।
2: वो दिलीप साहब के साथ खेलते थे टेनिस। शाम को हम पहुंचे, उन्होंने उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश हो गया। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, इस बच्ची को कुछ दिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई
1: जी,
2: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे

0: मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए
1: रात की,
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले, मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइन्स हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे
0: तो जी, आबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर था हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी, इतना ही था बस
1: जी।
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत, उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
1: जी, जी,
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे, तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में
1: जी? मैं अपने श्रोताओं जी का नाम कर जिसे लता जी गाने जी फिल्माया जाने वाला था, तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेक्टर के रिकॉर्डिस्ट करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची, तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, पहले से बहुत जहनी थी मैं, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तुम, उस पे बात पे आ गई। पर
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी स्टाइल बनानी।
0: बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान

0: बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन जी, मेरे पंचमदा
1: जी।
0: इतनी प्रभावित कि मैं, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं जिंदगी में
1: जी।
0: तो
1: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
0: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत अनूठा रिश्ता था,
1: बॉन्डिंग
0: बहुत ही बहुत बहुत
1: अलग। तो क्यों ना
0: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी
1: जी, बिल्कुल
0: वो था बस।
1: तो और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
0: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन
1: जी,
0: मेरे पंचमदा
1: जी।
0: इतनी प्रभावित कि मैं, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ
1: जी।
0: तो
1: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
0: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
1: बॉन्डिंग
0: बहुत बहुत बहुत अलग।
1: तो क्यों ना पंचमदा का ही गीत सुन लिया जाए जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी,
0: कोशिश करूंगी जी। गला बंद है पर कोशिश करूंगी
1: जी, बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले।

0: अच्छा वाह बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचमदा ने सिखाया पता है, उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी,
1: शर्मिला हाँ। जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोले यही चाहिए मुझे हाँ आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी,
1: आज
0: जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना जैसे मैं
0: जी
1: मुझे खुद को भी इस बात अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं एक लाइन ही दे दूं एक डायलॉग ही दे दूं तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी।
1: कोई भी गाना अच्छा पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम गवाएगा ना पंचम
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं नहीं तो मुश्किल है तो ये दो पार्ट्स में है गाना आपको भी याद होगा एक किशोर काका का सोलो है वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे दो शिफ्ट्स में काम होता था तब 9 से 1 और फिर 3 से आगे
0: अच्छा
1: और फिर ओवर टाइम तो वहीं सोए थे वो उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला

0: नो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
1: वो गाएगी,
0: हाँ बोले गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी, गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वो ही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी
1: जी,
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
1: करती है,
0: इस करके ये गाना मुझे मिला।
1: चलिए एक गीत सुन लेते हैं, आपकी पसंद का बताइए, तेरा मुझसे है पहले का नाता,
0: बिल्कुल,
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी।

0: मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: है। बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं लोगों ने, किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि

0: ये जो वो बोलते थे ना मंदा, मैं डायनामिक्स की जहाँ बात कर रही
1: हूँ, जी जी
0: देखिए, मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये और सॉफ्ट, उसी को भुलाना तो आजा आजा,
1: क्या बात है क्या तो बात है।
0: ये मैंने
1: ये आधार का जी, ये पंचम धाम में ही
0: ये उतार चढ़ाव डायनामिक समझे से कहते, कहाँ कितना आपको जोर देना
1: है,
0: कहाँ आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह,
0: कहाँ आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह,
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते।
1: जी जी जी, मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, उस छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: जो मेरा भाग्य ही
1: नसीब नहीं मिलता है, अच्छे अच्छों को नहीं मिला है, अभी भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है जिनको हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले सके सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया. लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म थी,
1: है ना,
0: बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो था. वो पहली बार मैं उनसे मिली थी.
1: हाँ,
0: उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात.
1: वाह,
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना है.
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के भी करीब उतना ही.
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है.
1: हाँ, बिल्कुल जी.
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी.
1: जी बिल्कुल.
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी
1: कोल्हापुरी ने.
0: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे

0: Good news is that Tejaswin Shankar, yes, the same Tejaswin Shankar who recently medaled up at the Commonwealth Games, has cleared the 2-meter mark and he would be gearing up again. Apart from that, news that Ayush Shetty has lost to Chinese Taipei's Chin. The women have been holding their heads high. Unnati Hooda has won her match in the round 3, and the pair of Gayatri Gopichand and Teresa Jolly have also advanced to round 3. In a few moments from now, PV Sindhu will be in action against Japan's Tomoko Miyazaki. We आज टाइम
1: पदक तालिका पर भी एक नजर डाल लेते हैं दर्पण। पदक तालिका में देखें तो अभी सबसे ऊपर चीन है, उसमें 105 गोल्ड, 39 सिल्वर और 37 रजत या 37 कांस्य पदक सहित 171 पदक जीते। जापान उसके ठीक नीचे 31 गोल्ड, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है, 37 उसके सिल्वर मेडल है जबकि 47 उसके कांस्य पदक है 125 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर कोरिया, तीसरे स्थान पर कुल 72 पदक है, जबकि भारत की बात करें 11वें पायदान पर 4 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज समेत 28 पदक भारत के खाते में है। दोस्तों इस घंटे के अपडेट में इतना ही, अगले एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे मोहम्मद आजमी और दर्पण टिकिया को अनुमति दीजिए, धन्यवाद।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात करते हैं चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था,
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी,
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी
0: जी।
1: मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर

0: करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
1: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
0: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैं मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम
1: जी,
0: किया
1: जी,
0: इतनी मतलब
1: बड़ी बात है, और मैं ताउम्र याद रहने वाली बात,
0: और ये आखिरी गीत इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
1: उनकी शुरुआती दौर में
0: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस,
1: आप हमारे लिए लकी हैं।
0: तो ये हमने सोचा ही नहीं
1: जी,
0: था
1: जी,
0: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
1: बिल्कुल,
0: गया।
1: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके हाँ, साथ गाना आपको मिला।
0: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी,
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
1: पुष्पा जी की आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क, कीजिएगा जरूर,
1: है।
0: तब मैं आपको बताऊंगी,
1: मेरा ही सवाल है,
0: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहाँ कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए,
0: बस वो गाना
1: जी,
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए चुप काम। तो वो बोले पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
1: जी,
0: बैंक में, सिर्फ आइएगा तो हम हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया
1: जी।
0: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं तो ये गाना नंबर वन पर होता
0: देखिए
1: है। मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से, और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहो, हाँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बाप रे, बिल्कुल।
0: तो
1: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।

0: देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आदिकवि

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरल के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरल के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विश्वनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: నిమిషాలు కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారాలు ఢిల్లీ నుంచి ప్రసారం అవుతాయి.
1: ఆకాశవాణి సే సమాచార సంధ్య కే సాథ్ మే సర్ ఫిరోజీ. निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया. आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता. भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक. अब समाचार विस्तार से. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे. बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे. ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया. आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है.
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है. आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
3: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते. चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है.
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए. श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया. श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं. श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा.
4: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा.
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया. गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए. श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है.
4: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101

0: गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
4: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
2: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
6: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
7: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
8: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
9: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
10: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंटवार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंटवार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक गंगाए डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंटवार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ

0: किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
1: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स. इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है. इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं. दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं, और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं. और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स. लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहे हैं.
0: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
1: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल. डिजाइनिंग वाज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन बाय आवर कलीग्स, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग capability is being developed now by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करे, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए. इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज्ड बाय सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी. डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं. टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50% हाँ, ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
0: जी. और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
1: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते है, जो कि मिथेनॉल हो. मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स. So it's also called as carbon recycling. You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा, government में अभी nuclear policy relax कर दी है, जिसमें private players भी आ सकते हैं. Nuclear energy, if you look at it, it's one of the cleanest energies. और इसमें अगर micro size reactors set कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा. दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है. बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो सोलार हो, वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है. हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज.
0: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
1: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, not to be scared of failures. दूसरी चीज है कि hard work के सिवा कुछ नहीं होता है. अगर आपको बड़ा कुछ accomplish करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो selflessly, और दूसरा है hard work करना चाहिए.

0: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
1: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस सेंट्रल, एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
0: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
3: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान, लेकिन ये

0: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
1: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल साहनी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
0: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
1: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था, वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरनमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियोंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
2: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
3: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय विज्ञानियों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल

0: शोधकर्ताओं की टीम ने मॉड राइस पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
0: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों की हो तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
2: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
3: जी,
2: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सूं की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूंसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज एक कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2,220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,300 के आसपास डॉल्फिन हैं। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान न ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है। इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं, गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है। आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
1: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
0: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
1: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
0: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. A committee headed by the Senior Deputy Election Commissioner and comprising an independent expert from IIT and IIIT will review ECI Net to double-check that it complies with the provisions of the Acts and Rules. The BJP has condemned the allegations levelled by opposition parties, particularly the Congress, against the Election Commission on SIR as extremely unfortunate. Addressing a press conference in New Delhi today, senior BJP leader Ravi Shankar Prasad said the Election Commission has issued a press note stating that all decisions related to the special intensive revision were taken with the consent of the Chief Election Commissioner and both Election Commissioners. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several developmental initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundara near Kollam in Keralam today. These initiatives aim to ensure women's participation in the cooperative sector and strengthen women's empowerment. Chief Justice of India Suryakant has said drug abuse among children should be viewed not only as a public health issue but also as a matter of child protection. He was speaking at a seminar on restoring childhood, preventing drug abuse and reintegration of children in need of care and protection in Patna today. The Chief Justice stressed the need to ensure that children affected by substance use are provided safety, treatment, counselling, rehabilitation and opportunities to resume education and family life. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for greater adoption of technology and innovation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York tonight. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 in Japan. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 7 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. And with that, we end this news bulletin.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा।

0: मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का ईरान का 7 दिन का प्रस्ताव खारिज किया। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज, हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंद्र पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिस्टिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ आज कच्छ जिले के दीनदयाल पतन प्राधिकरण में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ई मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से देश भर में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।
2: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की जेएनपीए और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा की पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का स्टेटस मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा उपार्जन बढ़ेगा, उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
0: बांग्लादेश ने एक विशेष राष्ट्रव्यापी खसरा रूबेला एमआर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत 6 महीने से लेकर 5 साल से कम उम्र के लगभग 34 लाख ऐसे बच्चों को लक्षित किया गया है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या छूट गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंटेंसिफाइड एमआर कैचअप वैक्सीनेशन शीर्षक से ये अभियान आज ढाका के विभिन्न क्षेत्रों में टीएनडी खेल के मैदानों में चलाया जा रहा है। पुर्तगाल और मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का फिर समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 81वीं महासभा की चर्चा के दौरान दोनों देशों ने समर्थन किया। ये समर्थन वर्तमान क्षेत्रीय और राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की व्यापक मांगों के बीच मिला है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मानचित्र जारी किया है जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ट्रंप जल डमरू मध्य के तौर पर दिखाया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने के लिए ईरान के 7 दिन के प्रस्ताव को ठुकराने वाली श्री ट्रंप की घोषणा के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की मांगों को मानने की ईरान की इच्छा पर भी संदेह जताया है। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान पर फिर से अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बनी हुई है। ईरान ने 7 दिन की शांति प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया था जिसके अंतर्गत सभी 5 मोर्चों पर लड़ाई रुक जाती। इसके बदले अमेरिका से ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाने, ईरान के रोके गए फंड जारी करने और तेल से जुड़े प्रतिबंधों में छूट देने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की बात भी कही गई थी। यह कदम इराकी हवाई अड्डों पर ईरानी उड़ानों के निलंबन के बाद उठाया गया है। विश्व दर्पण के लिए चाहत सिंह।
0: रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज होने के साथ यूक्रेन में 4 लोग मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, ग्लाइड बमों और जेट चालित ड्रोनों से हमला किया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले से एक डेटा सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और स्टारलिंक उपग्रह संचार प्रणालियों को सहायता प्रदान करता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस हर दिन युद्ध को और बढ़ा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरियों और औद्योगिक सुविधाओं पर ड्रोन हमले जारी रखे हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले उसके कार्यकर्ताओं और सांसदों और नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार निगरानी संस्था ने कहा कि महिलाओं से सहित पीटीआई समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ परिवारों ने कहा है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के ठिकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोग ने अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों तथा आवाजाही की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों पर आपत्ति व्यक्त की। और एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का ईरान का 7 दिन का प्रस्ताव खारिज किया। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज। हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश

0: आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rules issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. Chief Justice of India, Justice Suryakant, today inaugurated the country's first Victim Rights Centre in Patna. The first of its kind Victim Rights Centre in the country is established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several development initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundra near Kollam in Kerala today. These initiatives aim to ensure women's participation in the cooperative sector and strengthen women empowerment. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, PMO, Information Broadcasting Ministry. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Finance Ministry has announced that all public sector banks and regional rural banks will remain open tomorrow for the convenience of the customers. The ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from the 28th to the 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar is addressing the high-level session of the 81st United Nations General Assembly UNGA in New York tonight. Addressing the session, Dr. Jayashankar said that there must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism and our right to defend ourselves against terrorism will be exercised. Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for greater adoption of technology and innovation. Speaking at an IIT Madras Alumni Association event, Ms. Sitharaman said higher growth would accelerate the journey towards Atmanirbhar Bharat and Vikasit Bharat, but would require greater efforts from all stakeholders. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 in Japan. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 7 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. Now India are currently placed 10th in the medal standing and its overall tally has reached 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall at some places in Uttarakhand tomorrow. The IMD forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over Himachal Pradesh and West Uttar Pradesh tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
5: Akashvani నిజామాబాద్ కేంద్రం. సమయం 11:18. ఈ ప్రసారం ఇంతటితో సమాప్తం. రేపు ఉదయం 5:50 ఎఫ్ఎం రేడియో 103.2 MHz న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్పై మా ప్రభాత ప్రసారంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు మరి. నమస్కారం. జై హింద్.